0: Students Thomas Gibson serves as the program facilitator. I am Michelle Gibbs Spencer, and I am the program coordinator. For more information about the program or to sign up, you may visit room 2F01A, call 718-262-2337, or you can send an email to mgibbs@york.edu.
1: धोखा धड़ी चेतावनी अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MF A कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MF A कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF A अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF A कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: Yo, what's up? You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. I'm Olivia the Rose, the Vice President of Cardinal Studios.